0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता
3: 107 FM रेनबो ते। नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर ठीक 10:03 पर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो इस छोटे से ब्रेक के बाद चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप गपशप की, क्योंकि बातें तो ढेर सारी पड़ी रहती है हमारे पास। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें, ढेर सारी खबरें हमारे साथ रहती है, साथ ही साथ लाइफस्टाइल हैक्स भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि नॉनस्टॉप गपशप तो ऐसा ही है ना, जहाँ पे होती है दिल से दिल की बातें और होता है ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आज के वेदर फोरकास्ट के साथ। आज बताया जा रहा है कि हल्के बादल छाए रहेंगे और शायद दोपहर या शाम के वक्त

हल्की फुल्की बारिश हो जाए बादल गरजने के साथ साथ, साथ ही साथ अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश है। अधिकतम नमी जो है वो 89% तक है, यानी कि गर्मी के साथ साथ भी उमस भी। और बात करें अगर पिछले 24 घंटों की, तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9

आ रहा है कि बादल गरजने के साथ बारिश भी होने की गुंजाइश है, तो जब निकले तब पूरी तैयारी के साथ निकले अगर निकलना है तो, और साथ ही साथ छाता रखना तो वैसे भी बनता है क्योंकि गर्मी जो है इतनी, धूप से बचने के लिए। फिलहाल के लिए मौसम का हाल चाल तो हमने जान लिया, अब सुनते हैं हमारा गाना भी।

0: इतने खूबसूरत शुरुआत के बाद चलिए चलते हैं सीधे हमारे आज के दिन की ओर, क्योंकि क्यों है आज का दिन इतना खास, चलिए जानेंगे
1: आज के दिन।
0: दोस्तों, दुनिया में शायद सबसे खूबसूरत आवाज वो होती है जब कोई पूछता है कि घर कब आओगे। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप और अभी जो सेक्शन चल रहा है वो है आज के दिन, और मैं पापिया हूँ आपके साथ। और आज है एक ऐसा दिन जो समर्पित है उन रिश्तों को जो हमारी जिंदगी का असली ताकत होते हैं। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हर साल 15 मई को पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है ताकि हम एक पल रुककर उन लोगों के बारे में सोचे जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, इस खास दिन की शुरुआत साल 1993 में हुई थी जब यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने महसूस किया कि बदलती दुनिया में परिवारों के महत्व पर बात करना बहुत जरूरी है। तेजी से बदलती जिंदगी, काम का दबाव, बढ़ती दूरियां और लोगों का एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कटते जाना, इन सबके बीच संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि परिवारों को मजबूत बनाना और उनकी अहमियत समझने के लिए एक खास दिन होना बहुत जरूरी है। इसलिए साल 1994 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली डे फैमिली घोषित किया गया, और तभी से हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाने लगा, क्योंकि समाज की शुरुआत परिवार से हुई।

सकती है, और अगर परिवार मजबूत है तो समाज भी मजबूत रहेगा। कभी सोचा है दोस्तों, हम जिंदगी में सबसे पहले क्या सीखते हैं? चलना, बोलना, हंसना, रोना, प्यार करना, सम्मान देना, ये सब हमें कोई किताब नहीं सिखाती, ये सब हमें अपने परिवार से सीखते हैं। माँ की ममता से मिलती है, पापा की हिम्मत से मिलती है, भाई बहनों की दोस्ती से मिलती है, और दादा दादी की जिंदगी के अनुभव से। लेकिन आज जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि हम अक्सर अपने ही लोगों से दूर होते जाते हैं। पहले खाने की टेबल पर बातें होती थी, अब वहां मोबाइल रखे होते हैं। पहले छुट्टियों में रिश्तेदारों के घर जाया जाता था, अब ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजर जाता है। पहले लोग साथ बैठकर हंसते थे, अब एक ही घर में रहकर भी कई बार बातचीत इतनी कम हो गई है कि फोन का चार्जर कहाँ है, बस यही सुनाई पड़ता है। और शायद इसी वजह से यह दिन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों को सिर्फ निभाना नहीं, उन्हें समय देना भी जरूरी होता है। और सच कहें तो जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें किसी भी पार्टी, बड़ी पार्टी या महंगी जगह से नहीं बनती बल्कि उनसे बनती है। बरसात में पकौड़ों की खुशबू, सर्दियों में सबका एक कमरे में बैठना, बिजली जाने पर छत में बातें करना, माँ की बिना पूछे पसंद का खाना बना देना, और पापा का चुपचाप हमारी जरूरतें पूरी कर देना, बस यही छोटे छोटे पल बाद में जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत बन जाते हैं। आज क्योंकि है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज और आज का दिन इसी दिन के लिए खास है, तो बस मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि समय कम रहता है तो लिमिटेड कॉल्स ही ले पाते हैं हम इस प्रोग्राम में, आई नो, लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो डेफिनेटली फोन लाइन्स ऑन है। और आज के दिन चाहे आप काम पे हो, चाहे घर से दूर हो, या फिर जो भी हो, पर परिवार कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये जताना ज़रूरी ज़रूर है। तो फिलहाल फोन लाइन्स खुली है, बताइए कि आपका परिवार आपके लिए क्यों ज़रूरी है। फिलहाल आज के दिन मैं यही, और एक और चीज़ जो बताना चाहूँगी कि आज का दिन क्यों ख़ास है, वो है आज के दिन ही 15 मई 2028 को पहली बार मिक्की माउस पर्दे पर दिखाई दिया था। चलिए बात करेंगे इस बारे में, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना।

0: इस गाने के साथ हमारे पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, देखते हैं क्या मैसेज देते हैं वो अपने परिवार को। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड आफ्टर मॉर्निंग,
1: सॉरी गुड मॉर्निंग,
0: इवनिंग। हाँ, इवनिंग बोल बोल के ना, मैं इवनिंग में आती हूँ तो आदत हो गई है,
1: हमेशा इवनिंग आते हैं
0: तो वो आदत हो गया।
1: सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी,
0: कोई बात नहीं, होती रहती है।
1: आपका मीठी आवाज सुनकर मैं दो लाइन बोलना चाहता हूँ।
0: बोली,
1: ख्वाहिश है तुम्हारी तरह आवाज पाने की, ख्वाहिश है तुम्हारी तरह आवाज पाने की, मगर कोई हरकत नहीं इस दीवाने की, तुमसे नहीं खुदा से है, क्या जरूरत थी तुम्हारी आवाज इतना बेहतरीन और हसीन बनाने की।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, नाम बता दीजिए आप।
1: हम
0: बात करते करते ना नाम पूछना ही भूल गए। जी मोनिरुद्दीन, कैसे हैं, सब ठीक है, घर पे सब ठीक है,
1: आपका दुआ से खुदा अच्छा रखा है हमारे समय। और मैं ये चाहता हूँ सभी श्रोताओं और आपका परिवार अच्छा रहे, खुश रहे, मस्त रहे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि एक वास्तव टॉपिक है जो हमारे परिवार है। आज इंटरनेशनल फैमिली डे, इंग्लिश में एक कथा बात है, होम होम स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। तो हमारे घर में जहाँ रहते हैं हमारा पिता माता भाई बहन, वो जो अपनापन है इसके बॉन्डिंग में, वो जितना चाहे जितना ही दौलत हो वो बाहर के जाने के नहीं मिलेगा।
0: जी,
1: क्योंकि हमारे घर हमारे मंदिर है।

0: हमारे लिए हमारे मस्जिद है, हमारे घर ही हमारे सब है। इसीलिए हमारे जो मैं महसूस करूंगा जब हमारे कुछ बीमारी आता है, हमारे भाई बहन पिता माता हमारे पास आएगा, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो पैसे के जरिए देखेगा, लेकिन जो आपके अपना लोग देखेगा वो दूसरा कोई नहीं देखेगा। इसीलिए अपनापन बनाना रखना चाहिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हमारे परिवार वाले को।
1: थैंक यू। और गाना कुछ सुनना चाहते हैं
0: आपका पास है तो, वो परिवार वाला बहुत ही अच्छा परिवार है, हम साथ साथ है
1: जी।
0: फिल्म से ये सच्चाई तो भगवान है, ये गाना प्लीज सुना दीजिए
1: एकदम। थैंक यू
0: मैम। ओके बाय
1: बाय। तो फिलहाल थे मुनीरुद्दीन दा हमारे साथ और बड़े ही प्यारी प्यारी बातें की उन्होंने। और आपको बता दें कि आज के दिन एक और ख़ास बात भी है, बचपन की सबसे प्यारी मुस्कानों को अगर मैं याद करें तो वो जिसने हमारे चेहरे पर लाया था वो है मिकी माउस। जी हाँ, आज ही के दिन यानी 15 मई 1928 को पहली बार मिकी माउस पर्दे पर दिखाई दिए थे। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म प्लेन क्रेजी की टेस्ट स्क्रीनिंग की थी। करीब 6 मिनट के इस साइलेंट फिल्म में मिकी एक प्लेन बनाने की कोशिश करता है। मज़ेदार बात यह है कि पहली फिल्म में ही उसकी गर्लफ्रेंड मिनी माउस भी नजर आती है। शुरुआत में फिल्म ज्यादा नहीं चली लेकिन उसी साल आई स्टीमबोट विली ने इतिहास बदल दिया। इसमें पहली बार साउंड इस्तेमाल हुआ और मिकी पूरी दुनिया के फेवरेट बन गए। कहते हैं कि वॉल्ट डिज्नी ने एक छोटे चूहे को देखकर ये किरदार बनाया था। पहले इसका नाम मोर्टिमर रखा गया लेकिन बाद में नाम बदलकर मिकी कर दिया गया और फिर मिकी सिर्फ कार्टून नहीं रहा, वो बचपन की पहचान बन गया। तो ये था हमारी तरफ से आज का दिन। जी हाँ, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए मुनीरुद्दीन दा ने जो रिक्वेस्ट किया है वो रिक्वेस्ट रखना तो बनता ही है, क्यों है ना।
2: आज के दिन

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद भाई हमारे अगले कॉलर भी रेडी है अपने मैसेज के साथ। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉन स्टॉप गपशप में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको।
0: कैसे हैं आप, बताइए, नाम बताइए पहले।
1: जी मैं पारस पंडित चुचरा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं?
1: जी दीदी आपका आशीर्वाद से सब सही है, सब समृद्ध है, सब मस्त है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और आज परिवार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
1: जी आपको भी हैप्पी फैमिली डे, और सभी श्रोताओं को भी, आपके पूरे टीम को हैप्पी फैमिली डे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि आपने कॉल किया आज के दिन। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए अपने परिवार को।

0: अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ और सभी स्वस्थ रहे, सभी शांति से रहे, यही हम मैसेज देना चाहते हैं।
1: तो और गाना कौन सा सुनवाना चाहते हैं ये भी बता दीजिए।
0: गाना मैं अपनी पत्नी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, चांदनी पिक्चर का, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल।
1: ओके ओके, तो अपनी चांदनी को, चांदनी फिल्म का टाइटल ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं
0: जी। धन्यवाद दीदी।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आपसे पारस जी वापस। ओके
0: जी, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी नाइस डे।
1: आपको भी थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए
0: जी। धन्यवाद दीदी।
1: थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। धन्यवाद दीदी।
1: तो चलिए फिलहाल चांदनी फिल्म का ये ट्रैक भी सुन लेते हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाज में।

0: दोस्तों प्यार ढेर सारा मिल रहा है फिलहाल, एक चुटकी नुस्खे का वक्त आ गया है, पर उससे पहले एक और कॉल चलिए ले लेते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके नॉनस्टॉप गपशप में।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार पतिया जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नॉनस्टॉप गपशप में।
1: मैं पश्चिम पारा से हाफिजुल मोल्ला बात कर रहा है आपके साथ।
0: जी कैसे हैं आप और घर परिवार में सब कैसे हैं बताइए।
1: बहुत अच्छा है। और जो आज परिवार दिवस है ना, हमको ऐसे मरेंगो को सबको मैसेज देना चाहते हो जो सब कुछ ठीक ठाक रहो, अच्छा रहो
0: एकदम,
1: और तुम्हारा परिवार के लिए हम खुश रहो, तुम भी खुश रहो।
0: जी जी।
1: और ऑल कोलकाता को हम लोग शुभ कामना देता है उनको परिवार के लिए, सबकी परिवार के लिए। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ काम करने के लिए हमको जरूरत है, हम लोग करना चाहते हैं, करेंगे। सब लोग मिलजुल कर काम करना चाहिए तो करेंगे ना।
0: एकदम सही बात बोला है आपने।
1: हम इंसान तो एक ही है, उनको जो खून है रेड कलर, तो हिंदू को जो खून है रेड कलर, मुस्लिम को जो खून है रेड कलर, तो एक साथ मिलजुल कर काम करने के लिए बात बुरी क्यों आती है। हम लोग इंसान तो इंसान ही है
0: जी,
1: और दूसरा कोई चीज तो नहीं है। हम लोग इंसान तो इंसान ही है, और एक इंसान के लिए और एक इंसान को वो काम करने के लिए जरूरत है
0: जी।
1: मेरा को एक बीमार हुआ तो एक मेरे को पास एक हिंदू आदमी है, तो मेरे को बीमार के लिए तो आती है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। उनको बीमार पे हम लोग जाते हैं
0: जी, बिल्कुल। हम इंसान हैं तो इंसानियत के हिसाब से सबको हेल्प करना, सबके लिए सबका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बिल्कुल। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: सजल, मैं फिल्में बार बार अलका याग्निक और कुमार

0: हम प्रतिबंधी आदमी है, दो आंख नहीं है ना। और तुम्हारा गाना बहुत अच्छा, तुम्हारा जो प्रोग्राम टॉपिक तो बहुत अच्छा लगता है।
1: थैंक यू।
0: और तुम लो माइसून की याद हम लोग सुनेंगे 11:10
1: जी बिल्कुल सुनेंगे। ठीक है
0: ठीक है
1: ठीक है ओके, फिर मिलते हैं आपसे। ओके
0: ओके ओके।
1: तो चलिए इनकी फरमाइश भी पूरी कर लेंगे, पर उससे पहले शुरुआत करेंगे हमारे एक चुटकी नुस्खे की।
2: एक चुटकी नुस्खे।
1: तो नमस्कार दोस्तों, भागती दौड़ती जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज कम पड़ती है तो वो है समय। सुबह आंख खुलते ही भागम भाग, ऑफिस की जल्दी, फोन की बैटरी खत्म, बैग में कुछ मिलता नहीं और ऊपर से स्ट्रेस अलग। लेकिन अगर जिंदगी की परेशानियों का हल छोटी छोटी ट्रिक्स में मिल जाए तो बस समझ लीजिए आपका दिन थोड़ा आसान हो सकता है। मैं पापिया हूँ आपके साथ और आज एक चुटकी नुस्खे में हम बात करेंगे बिजी लाइफ इजी हैक्स की, यानी छोटे छोटे ऐसे हैक्स जो आपकी डेली लाइफ को थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा इजी और थोड़ा स्ट्रेस फ्री बना देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर सुन लेंगे उससे पहले गाना।

0: भी लगना है। तो कई बार होता है ना कि पूरी नींद लेने के बाद भी चेहरा ऐसा लगता है जैसे रात भर असाइनमेंट बनाते रहे हो। सुबह की सुस्ती, आंखों की हेवीनेस और वो 5 मिनट और वाला मूड। ऐसे में एक छोटा सा हैक ट्राई कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन मत उठाइए। हाँ, नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर लेंगी भाई। उसकी जगह एक ग्लास नॉर्मल पानी पीजिए और चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारिए। और घर में आइस क्यूब्स हो तो उसे एक साफ कपड़े में रैप करके 20 से 30 सेकंड फेस पर हल्का रब कीजिए। चेहरा इंस्टेंटली फ्रेश करेगा। और एक मजेदार ट्रिक कि अपनी सुबह की प्लेलिस्ट बनाइए, क्योंकि कई बार अलार्म नहीं मूड हमें उठाता है। बात करेंगे आगे भी लाइफस्टाइल हैक्स के बारे में। भाई बिजी स्केड्यूल है, लाइफस्टाइल हैक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, पर उससे पहले ले लेंगे कॉल, क्योंकि फोन लाइन पे इंतजार कर रहे हमारे कॉलर साहब। हेलो,
1: मैं अरूप बोल रहा हूँ हावड़ा से।
0: जी अरूप दा, कैसे हैं?
1: ये अच्छा है,
0: बताइए घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: आखिरी महीने में तो मेरा बहुत बड़ा माने समस्या हुआ था
0: जी,
1: शरीर के बारे में। 12 दिन माने हॉस्पिटल में थे।
0: ओहो, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट।
1: उपड़ेला का दुआ में हम बच गया।
0: एकदम एकदम, क्यों नहीं, हम सब दुआ करेंगे आपके लिए।
1: हम फैमिली को माने माने सभी को फैमिली को अच्छा रहने का माने कोशिश करता है
0: जी।
1: मेरा मेरा वो जो माने मेरा लड़की है ना, राजारण में काम करता है, वो तो माने माने एक दिन माने ड्यूटी चेंज होता है।
0: अच्छा।
1: 12 बजे से ड्यूटी से कैसे 8:30 बजे माने निकलता है, माने घर आने से 11 बजे।
0: अच्छा अच्छा,
1: मेरा बहुत चिंता है
0: जी। तो बताइए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने फैमिली को?
1: हाँ, मैं फैमिली को क्या मैसेज देना चाहती हूँ, वो ठीक ठाक रहे, शरीर भालो रहे, ये मेरा कामना है।
0: ओके, और कोई गाना?
1: गाना तो ये रात बीगी बीगी।
0: ओके ठीक है,
1: बहुत बढ़िया वाला गाना है।
0: ओके, जरूर सुनेंगे हम सब मिलकर। ओके,
1: का गाना है
0: जी,
1: शायद शंकर जय किशन का म्यूजिक है।
0: ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल
1: ठीक है,
0: चलिए मिलते हैं वापस। ओके बाय। तो बातें हो रही थी एक चुटकी नुस्खे में बिजी लाइफस्टाइल हैक्स के बारे में। जी हाँ, अब बात करते हैं एक मिस्ट्री बॉक्स की, जिसे हम बैग कहते हैं। बैग में पेन ढूंढो तो चार्जर निकल जाता है, चार्जर ढूंढो तो पुराने बिल्स, और सबसे जरूरी चीज हमेशा हमेशा सबसे नीचे मिलती है। तो इसका आसान सलूशन क्या है? अपने बैग में छोटे छोटे जिप पाउचेस रखिए, और पाउच सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं, एक छोटी एसेंशियल्स के लिए भी और एक इमरजेंसी आइटम्स के लिए भी। इससे बैग साफ भी लगेगा और पैनिक भी कम होगा। और एक और स्मार्ट ट्रिक, हर रात सिर्फ 2 मिनट बैग रिसेट की आदत डालिए, पुरानी रिसीट्स निकाल दीजिए, पानी की खाली बॉटल हटा दीजिए और अगले दिन की जरूरत की चीजें रख दीजिए। सुबह की आधी टेंशन वही खत्म हो जाती है भाई। अब फोन की बैटरी बचाने के हैक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेंगे हमारा रिक्वेस्ट किया हुआ गाना। और उपदा ने जो रिक्वेस्ट किया था

तो चलिए फर्स्ट लाइफस्टाइल हैक की बात करते हैं। सुबह सुबह जल्दी फ्रेश कैसे लगा जाए, बिजी स्केड्यूल है, वही टाइम नहीं मिलता अपना ख्याल रखने का, पर

0: तो दोस्तों आप चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बिजी लाइफस्टाइल के बारे में बातें हो रही थी, उसमें किस किस तरह के हैक्स हम यूज करें ताकि लाइफ सेट हो सके एक झटके नुस्खे में। बात करते हैं अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, फोन बैटरी बचाने के हैक्स के बारे में। हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता भी आजकल यही हो गई है कि बैटरी कितनी है। 5% बैटरी देखकर इंसान उतना इमोशनल हो जाता है जितना एग्जाम रिजल्ट देखकर भी नहीं होता होगा। तो बैटरी बचाने के कुछ आसान हैक्स चलिए बता देते हैं। स्क्रीन ब्राइटनेस ऑटो मोड पर रखिए, बैकग्राउंड में चल रहे अनयूज्ड एप्स बंद कर दीजिए, ब्लूटूथ और लोकेशन हमेशा ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, रात भर फ़ोन चार्जिंग पर छोड़ने की आदत कम कर लीजिए, और अगर बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है तो लाइव वॉलपेपर भी हटाइए, क्योंकि कई बार फ़ोन नहीं वॉलपेपर ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। वहीं आजकल के लाइफ में स्ट्रेस भी है, बिजी लाइफ में सबसे जो चुपचाप जो चीज़ बढ़ती है वो है स्ट्रेस। कभी काम का प्रेशर, कभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस, कभी बस बिना वजह का ओवरलोड। ऐसे में एक छोटा रूल याद रखिए, हर 2-3 घंटे में खुद को 2 मिनट का पॉज दीजिए, बस डीप ब्रीदिंग, 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड और 4 सेकेंड एक्सहेल। सिंपल लगता है लेकिन माइंड को काफ़ी रिलैक्स भी करता है। और एक छोटी सी बात, हर मैसेज को तुरंत रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ अर्जेंट नहीं होती, कभी कभी थोड़ा स्लो होना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं उस रूम की जो सुबह साफ होता है और रात तक डिजास्टर जोन बन जाता है, ऐसा लगता है कि लड़ाइयाँ हुई हो वहाँ पे, लेकिन पूरा कमरा साफ करने का सोचते ही आलस आ जाता है। तो ये काम आएगा 2 मिनट क्लीनिंग रूल, बस टाइमर लगाइए 2 मिनट का, और उस दौरान सिर्फ विजिबल चीज़ें ठीक कीजिए, पिलो सही कीजिए, कपड़े फोल्ड कीजिए, टेबल साफ कर दीजिए, कूड़ा डस्टबिन में डाल दीजिए, बस। पूरा रूम परफेक्ट नहीं होगा लेकिन जो हमारा दिमाग है ना वो थोड़ा सा इंस्टेंटली हल्का ज़रूर फील करेगा, क्योंकि साफ जगह दिमाग को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज फील कराता है। यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी स्मार्ट आदतें उसे थोड़ा बेटर जरूर बना देती हैं, क्योंकि कई बार सॉल्यूशंस नहीं बस एक चुटकी नुस्खे ही काफी होते हैं। फिलहाल एक चुटकी नुस्खों का जो सेगमेंट है आज फिलहाल के लिए यही तक।
1: एक चुटकी नुस्खे

अब चलते हैं सीधे कोलकाता कल्चर की ओर। यहाँ पे तो हर जगह बस एक ही खबर दिखाई दे रहा है, वो है उच्च माध्यमिक में बेटियों ने मारी बाजी। कुल 91.23% रहा परसेंटेज। जी हाँ, पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 के परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिए गए और इस बार कुल पास परसेंटेज 91.23% रहा, जो पिछली बार से यानी कि 90.79 से कई ज्यादा था। जी हाँ, तो इसके साथ ही वही 93.84% के साथ हावड़ा दूसरे और 93.71% के साथ साउथ 24 परगना तीसरे स्थान पर रहा है। सूची में कोलकाता 91.88% के साथ आठवें स्थान पर रहा। नई घोषणा भी की गई है, अगर कोई स्टूडेंट इस साल के अपने परिणाम से खुश नहीं है तो उसे फिर से अपने मार्क्स बढ़ाने का मौका मिल सकता है। ऐसे में उस कैंडिडेट को इस साल की मार्कशीट सरेंडर करनी होगी, इसके बाद वो फिर से परीक्षा देने बैठेगा। साउथ 24 परगना के नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन विद्यालय के छात्र अदृतपाल ने भी 99.2% के साथ उच्च माध्यमिक टॉप किया है। फिलहाल कोलकाता कल्चर में बस इतना ही और हम बढ़ते हैं आगे क्योंकि हो गया है जाने का समय। फिलहाल जाते जाते विशाल ददलानी और सुनिधि चौहान के आवाज में अगला गाना हमारा, और मिलती हूँ ठीक 11:10 पर वापस लो आ गई उनकी याद के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और शब्द का ये गाना सुनते रहिए क्योंकि थोड़ी देर में वापस यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बने रहिए 107 FM रेनबो के साथ। मैं पापिया मिलती हूँ थोड़ी देर में FM गोल्ड पर।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी परिजन को
2: 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
4: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गांदोरिया 107 FM रेनबो ते। गांदोरिया, गांदोरिया छुए जाक मन, छुए जाक मन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 107 FM Rainbow.
1: एक सौ सात एफ एम रेनबो, वक्त दोपहर के तीन बजे का और मनोरंजन का सिलसिला शुरू हो चुका है सुनने वालों, क्योंकि तीन का तड़का को है आप ही का इंतजार। साथ आपके मैं आपका रेडियो वाला, जी हाँ मैं अमर। जन्मदिन है आज एक ऐसी अदाकारा की जिनके थिरकने से 8 से 80 के उम्र के लोग भी आज भी थिरकते हैं। जी हाँ, अभिनय प्रतिभा बेमिसाल माधुरी दीक्षित, माधुरी जी, जिन्होंने लगभग 4 दशक से हमारा मनोरंजन किया।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो।

अक्टूबर सन 1999 में उन्होंने लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया स्थित डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की। उनके दो बेटे एरिन और रयान हैं। शादी के बाद उन्होंने कुछ समय अमेरिका में बिताया और बाद में भारत लौटकर फिल्मों और टेलीविजन में फिर से सक्रिय हो गईं। सिर्फ फिल्म और टेलीविजन में ही नहीं, बल्कि अब तो माधुरी जी OTT प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचा रही हैं।

माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया जिसे आज की अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती है। सुनने वालों, 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में सुप्रतिष्ठित किया।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मकाम तय किया था दोस्तों, जिसे आज की अभिनेत्रियाँ अपने लिए बिल्कुल आदर्श मानती हैं। 80 और 90 के दशक में उन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। इनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी दीक्षित पूरे देश की धड़कन बन गई।

पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की इच्छा थी दोस्तों, और शायद यही एक वजह रही होगी कि माधुरी ने अपना जीवन साथी श्री राम नेने को चुना, जो कि पेशे से एक चिकित्सक थे। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ने के बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी में स्नातक किया। बचपन से ही उन्हें नृत्य में रुचि थी, जिसके लिए माधुरी ने 8 वर्ष तक कथक का प्रशिक्षण लिया। सन 2008 में उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया दोस्तों।

0: सर।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

जी हाँ, माधुरी जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई पूरे एफएम परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से भी। अभी तक आपके साथ था मैं आपका रेडियो वाला, मैं अमर, लेकर प्रोग्राम 3 का तड़का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 107 FM Rainbow, शात शुरे शारा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 FM रेनबो सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
4: তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে, উইকেন্ড ক্যাফে।

107 AIRFM रेनबो यानी खरा सोना। दिल से दिल तक बीरभूम जिले में कुछ हिस्सों में, जी हाँ, मौसम की जानकारी के अनुसार बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश तथा बिजली कड़कने के साथ 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। वहाँ रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति अगले 2-3 घंटे में बांकुड़ा, वेस्ट मिदनापुर तथा झाड़ग्राम में भी होने की संभावना है। वहाँ भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी बर्धमान, नदिया, हुगली तथा उत्तरी 24 परगना में भी आने वाले 2-3 घंटे में आंधी तथा बारिश की संभावना है। वहाँ भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सावधानी बरतें।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों का इतिहास बहुत दिलचस्प है दोस्तों। हर दशक में ऐसी फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस, संगीत, डायलॉग और फैशन सब पर असर डाला, संगीत पर भी असर डाला। चले अलग अलग दौर की कुछ सुपरहिट फिल्मों की बात अगर करें तो 70 से 80 के बीच का जो दौर था वो एंग्री यंग मैन और मसाला युग था। जी हाँ, मसाला युग, यानी इस दौर में एक्शन ड्रामा और यादगार डायलॉग्स का जमाना था। शोले इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर माना जाता है, ये तो आप सभी को पता है। कितने आदमी थे आज भी फेमस डायलॉग है। किसने कहा था कितने आदमी थे? जी हाँ, गब्बर सिंह ने, यानी कि जो डाकू था, उन्होंने कहा था कितने आदमी थे आज भी फेमस डायलॉग है। दीवार ने भी इस दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का रोल निभाया था, किरदार निभाया था। अगर आप मिस्टर इंडिया की बात करें तो मोगैम्बो खुश हुआ आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। किसने कहा था मोगैम्बो खुश हुआ? अमरीश पुरी जी ने। जी हाँ, अमरीश पुरी जी का वो फेमस डायलॉग था फिल्म में, कई बार उन्होंने कहा था कि मोगैम्बो खुश हुआ। फिलहाल आप तो खुश हो जाइए क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो वाला मैं अमर।

जी हाँ, करूँ मैं प्यार का सजदा। तो मैं बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा था मैं बातें कर रहा था कि 70 से 80 का जो दौर था, दशक था, वो एंग्री यंग मैन और मसाला युग था। शोले, दीवार, मिस्टर इंडिया, ये सब फिल्में थी और काफ़ी हिट रही दोस्तों ये फिल्में। इस दौर में हीरो बड़े बड़े विलन से लड़ता था और उन्हें पछाड़ देता था अकेले 40 लोगों को, वो हालांकि अभी भी दिखने को मिलता है। और ये फिल्में थिएटर में सालों चलती थी सिनेमाघरों में। 90 का जब दशक आया तो 90 के दशक में एंग्री यंग मैन का जो इमेज था वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ और उसकी जगह पर आ गया रोमांस। रोमांस का गोल्डन पीरियड यानी कि 90 का दशक। 90 में प्यार और म्यूजिक ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन में फैमिली फिल्मों का ट्रेंड शुरू हुआ। और अगर आप DDLG की बात कहें तो शाहरुख खान का रोमांस आइकॉन बनना यहीं से शुरू हुआ था। जी हाँ, कुछ कुछ होता है एक ऐसी फिल्म थी, कॉलेज रोमांस का ट्रेंड सेट किया। 90s की फिल्मों के गाने आज भी हम बड़े चाव से सुनते हैं सुनने वालों।

जी हाँ, और मैं वापस आ गया हूँ आपके साथ, आपके पास ही हूँ। और आपको ये बता दूँ कि मैंने अभी अभी कहा था कि 90 का जो दशक है वो रोमांस का दशक था और काफ़ी फिल्में बनी रोमांस पर। 2000 का जो दशक है नई

0: कहानी और बड़े बजट। इस दौर में कंटेंट और टेक्नोलॉजी दोनों बेहतर हुए। लगान जो कि ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली फिल्म थी, कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म और सुपरहिट फिल्म रही काफी। थ्री इडियट्स, जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम पर बनी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी दोस्तों। ये इस समय से बॉलीवुड ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में कामयाब हो गया था।
1: मैं पीजे

जी हाँ, आपको बता रहा था मैं, 2000 नई कहानी और बड़े बजट की फिल्म थी लगान का होना प्यार है, थ्री इडियट्स। ये समय बॉलीवुड की ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में सफल रही और 2010 से अब तक का जो कंटेंट है, कंटेंट प्लस बॉक्स ऑफिस धमाका। जी हाँ दोस्तों, आज की फिल्मों में कहानी, विजुअल और पैन इंडिया अपील सब कुछ है। दंगल दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हो चुकी है। बजरंगी भाईजान इमोशनल स्टोरी जिसने सबका दिल जीत लिया, बिल्कुल पठान यानी कि ये स्पाई यूनिवर्स की बड़ी ब्लॉकबस्टर। अब फिल्मों की कमाई हजारों करोड़ तक पहुँच गई है। सुनने वालों, आप सुनने जा रहे हैं ये गीत कुमार सानू की आवाज में। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी सड़क, संजय दत्त ने अभिनय किया था, रोल किया था इस फिल्म में।

वैसे बॉलीवुड की टॉप 20 हिट फिल्मों की बात अगर किया जाए तो उसमें सबसे पहले 1975 की फिल्म शोले आती है दोस्तों, जी हाँ, भारत की सबसे आइकॉनिक फिल्म और कई साल तक थिएटर में चली। पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सन 1995 में सबसे लंबा थिएटर रन रहा, मुंबई में 25 साल से ज़्यादा ये फिल्म चली। इसके बाद आता है हम आपके हैं कौन, 1994 में फैमिली एंटरटेनमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ इस फिल्म में। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि एक पूरी जो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फिल्म में फैमिली को दिखाया गया है। कुछ कुछ होता है सन 1998 में रोमांस एंड म्यूजिक का मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मल्टी स्टारर फैमिली ड्रामा सुपरहिट फिल्म कौन सी, कभी खुशी कभी गम सन 2001 में।

जी हाँ, टॉप 20 की बात कर रहा था तो पांचवें नंबर पर यानी कभी खुशी कभी गम, जो कि मल्टी स्टारर फैमिली ड्रामा सुपरहिट फिल्म रही, उसके बाद ऑस्कर नॉमिनेटेड इंटरनेशनल फेम वाली एक फिल्म आई जिसका नाम था लगान, जी हाँ 2001 में। इसके बाद गदर एक प्रेम कथा 2001 में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की इस फिल्म ने। जी हाँ दोस्तों, डेब्यू फिल्म रही ये, होकर भी सुपरहिट रही कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म थी, 2000 में आई थी ये फिल्म, और एजुकेशन पर शिक्षा पर बनी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थ्री इडियट्स। उसके बाद धूम 2 2006 में, स्टाइलिश एक्शन का नया ट्रेंड आ गया इसमें, एक्शन का नया ट्रेंड आया फिल्म धूम 2 में, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी को देखा, तकनीक को देखा।

जी हाँ, एक दिल की दीवानी एक दीवाना दिल जो भी हो घुमा फिरा के बात बराबर है, कोई बात नहीं। तो मैं बातें कर रहा था चेन्नई एक्सप्रेस, जी हाँ, धूम टू की बातें तो मैंने की कि स्टाइलिश एक्शन का नया ट्रेंड शुरू हुआ इस फिल्म से। और चेन्नई एक्सप्रेस 2013 पहली 200 करोड़ कमाने वाली फिल्मों में से रही। पीके जो कि सन 2014 में आई, 300 से ज़्यादा करोड़ क्लब शुरू किया। बजरंगी भाईजान 2015 इमोशनल मेगा ब्लॉकबस्टर, मैंने पहले ही कहा था। सुल्तान 2016 में स्पोर्ट्स ड्रामा सुपरहिट, जी हां। और दंगल 2016 दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई। संजू 2018 बायोपिक का नया रिकॉर्ड बना।

कुणाल गांजावाला की आवाज में इस अंतिम गीत के साथ ही आज आपका ये रेडियो वाला दोस्त आपसे इजाजत चाहेगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दुआ में उठे अगर हाथ तो फिर एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी मांग लीजिए, कीजिएगा।